ਹੋਵੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ, ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜੱਚਾ। ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਏਂਦਾ, ਤਿਵ ਹੀ ਕੋ ਨੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੂੰ ਚਉ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਦੇਈ ਸਿਸੇ ਉਤਾਰ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੀਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ, ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੁੜਾਵੇ ਦੇਖ। ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਚਰ ਪ੍ਰੀ ਨਾ ਦੇਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ, ਹੋ ਪੱਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰ। ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ, ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਵ ਰਸ ਚਾਰ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਸਭ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਥਾਟ, ਸਿਰਜ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਹਰ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਛਨ ਮਹੇਸ਼, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਸਥਾਰਿਆ। ਨਵਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਜ, ਹਰ ਰੰਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੇਖੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਕਲ ਧਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬੇਦ ਆਪ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ, ਇਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇ ਛੋੜ। ਜਿਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਮੋਹਿਆ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਰਜਨ ਤੂੰ ਜਲ ਪਹਾੜੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਕੰਤਾ ਤੂੰ ਸੌ ਸਿਜੜੀ, ਮੈਂਡਾ ਹੱਬੋ ਦੁੱਖ ਅਲਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਰਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਮਿਲ ਕੀਚੈ ਭੋਗ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਕੌਣ। ਤੁਧ ਸਿਰਜਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਕ ਸਗਲ ਭਾਉਣ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰੌਣ। ਤੁਧ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ, ਤੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਜਗ ਉਧਰਨ। ਤੁਧ ਥਾਪੇ ਚਾਰੇ ਜੁਗ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਗਲ ਧਰਨ। ਤੁਧ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕੀਆ, ਤੁਧ ਲੇਪ ਨਾ ਲੱਗੈ ਤ੍ਰਿਣ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਹੈ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਤਿਸ ਲਾਵੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ। ਤੂੰ ਹੋਰਤ ਅਪਾਏ ਨਾ ਲੱਭੇਹੀ, ਅਵਨਾਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਤਹਿ ਅੰਗਣੇ, ਹਬ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਹਿਕਸ ਕੰਤੈ ਬਾਹਰੀ, ਮੈਂਡੀ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੱਬੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਸਹੁ ਬੈਠਾ ਅੰਗਣ ਮੱਲ। ਪਹੀ ਨਾ ਵੰਜੈ ਬਿਰਥੜਾ, ਜੋ ਘਰ ਆਵੈ ਚੱਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੇਜ ਵਛਾਈ ਕੰਤਕੂ, ਕੀਆ ਹਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕੀਤੀ ਮੰਜ ਨਾ ਸਮਾਵਈ, ਜੇ ਗਲ ਪਹਿਰਾ ਹਾਰ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋਨ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਤੂੰ ਹੁਕਮੀ ਸਾਜਹਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਾਜ ਸਮਾਵਹੀ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਕਿਉ ਤੁਜਹਿ ਧਿਆਵਹੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤਹਿ ਆਪ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਾਵਹੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਇਹ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਹੈ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਵਹੀ। ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਮ ਪੱਸੀ ਹੱਠ ਮੈਂ, ਪਿਰੀ ਮਹਿੰਜੈ ਨਾਲ। ਹੱਬੇ ਦੁੱਖ ਉਲਾਹਿਅਮ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਵਾਉ,
लम्मे से वह दर खड़ा प्रिय तू जान महिंजा साओ जो ही साई मुह खड़ा। महला पंजवा क्या गलायो पूछ पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वर्तनता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यों आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखणे महला पंजवां कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर। महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो। महला पंजवां पोरे पोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत। पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जाण है दूर तू वरत है जाहरा। तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख अनंदी अनंत सब जोत समाहरा। तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा। जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा। दखणे महला पंजवां गह डरड़ा तृण छाया गाफल जल्यो पाहि जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहि। महला पंजवां नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद। महला पंजवां नानक पुसरियां पकाइया पाइया थालै माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे। पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अगे सकति हारिया केवै हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचों बिंब उठालियो जल माहे समाइया। दखणे महला पंजवां अगाहा कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जनमड़ा। महला पंजवां सज्जन मैंडा चाइया हब कही दा मेतर हब्बे जानने अपना कहीं ना खाहे चित। महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया। पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा। लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा। सबे काज सवारे जा तुद पावंदा। दखणे महला पंजवां
देखण कु मुस्ताक मुख कजे आ तौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवा दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा महला पंजवा कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी शोभा जनै की जे वडहर परतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछै हो गई से मैं पिछै पीर व्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महिंजी आस महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव पावे आए जो बैठे से फाथिया उबरे भाग मथाए महला पंजवा दिता हब मजाए खाली कोई ना जानिए तै सखी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हों ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावे प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवे जावे सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावे प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे प्रभ देख दिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवे सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावे हो निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवे दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंत ना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग मानही महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यों क्यों मन रूसी है जिस है हमारी किंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन तने अत गुलाल नानक बिन नावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी।

मार निवाड़ा गुर पौ जले पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन तितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखणे महला पंजवां जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवां कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवां क्या तक है व्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो न पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे इचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर किरपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवां लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंझाऊ सो तनी चौंदो मुख अलाय महला पंजवां माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाय महला पंजवां।

मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया। मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया। मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया। मन अर्प्य हो हौ मैं तजो हो इत पंत जलाइया। नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया। सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया। तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया। दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह। पाव मलावे कोल कमल जिवै बिग साम दो महला पंजवा। प्रिया संदड़ी।

करोड़ जान गंधर्वा नगरी सुख कटाऊ डूए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिए भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं किन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थी कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिरह संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोए नानक किन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथा पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदर हो थोथा कूड़े यार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय कटबुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब स्यो सब जगत तराई ओन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्लै होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हों खन्नी है महला पंजवा सज्जन सच परख
मुख अलावन थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेख मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखने महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निरासा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरियोद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा।

पंजवा मुआ जीवन दा पेख जीवन दे मर जान जिन्ना मोहब्बत एक सिंह ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवै पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवै नीर पौड़ी कीमत कहण ना जाइए सच साहा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै पन्नण करन समरत है ओपत सब परलै करन कारण समरत है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै क्या मानस डोलै गहर गंभीर अथाह तू गुण ज्ञान अमोलै सोई कम कमावना किया तुर मोलै तुदहों बार किस नहीं।

पाया राम ते पवह न बार बार रहाउ झूठा जग डहके कना दिन दोए बर्तन की आस राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न पई प्यास गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुद्र पार उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावहंगी सुन है सुन मिलिया समदर्सी पवन रूप होए जावहंगे बहुर हम काहे आवहंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावहंगे रहाउ जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चकावहंगे दर्शन छोड़ भये समदर्सी एको नाम त्यावहंगे जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमावहंगे हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समावहंगे जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो एक अनेक होए रहो सगल में है अब कैसे परमाव हो राम मोह को तार कहां ले जई है सो दो मुक्त कहां देओ कैसी कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव तारन तरन तबे लग कही है जब लग तत ना जानिया अब तो बिमल भय घट ही मह कह कबीर मन मानिया जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे तह हर को नाम छडावन रहाओ काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन कह कबीर ते अंते मुकते जिन हृदय राम रसायन देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना बाबा अब ना बसो एह गाँव करी करी का लेखा मांगे कायत के तू नाव रहाओ तर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पहारी पंच किरसानवा भाग गए लह बांदे हो जीओ दरबारी कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा अब की बार बख्श बंदे को।

संसाद अनपहु किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपहु होए बना हम्बे सहो हदूर देखे ता पहु पवे बैरागी अड़े हुक्मे बूझे ता निरपो होए बना हम्बे हर पाखंड ना कीजे बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

लंबै। कहो कबीर एक बेनती बराजी अड़े, मोको भौजल पार उतारवणा हम्बै। राजन कौन तमारे आवै, ऐसो भाव गिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावै रहाओ। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहानी। कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी, जात ना काहू की मानी। श्लोक कबीर गगन दमामा बाजियो, परियो निशान काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाव। सूरा सोप

सुख सागर सुरतर चिंता मन काम धेन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल तां कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण वेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइए, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पौ भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मूर्ख

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वस्ते खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

चूकी अब मानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मैं जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

ते मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समरथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण गुण।

खोई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदण राती काम क्रोध अहंकार विगुती हों मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया असम पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज कर वसे अड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कही है क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिलै विछुनी तन मन आग्या राखै नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखै महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजै अन दिन रतड़िए सहज मलीजै सुख सहज मलीजै रूस ना कीजै गर्भ निवार समाणी साचै राती मिलै मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी।

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे गुर रूप मरारे त्रे भवन धारी

आप उथापी तिस भावे सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुण है समानी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूकाया वन जानू।

साचै राचा गुरमुख तरियै तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अयाणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणी किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरियै जम डर मरियै जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांध।

राम गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे भय काट निरपहो तरह दुत्तर

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विकट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुगद किस्मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाई, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हौ सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा, बिखम पौ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर धरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोल है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरियात, ज्यों तू चलावह प्यारे हो तिवें चला, हमरे हाथ किश नाही, जां तू मेलह ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हर आप, ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अराध्या, तिनके पाप एक निमक सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हों भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिये रखण हार, हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बणी, तू जल तल महियल भरपूर सब ऊपर साच तणी, तू थान थरंतर हर एक हर एको एक रविया,
वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एको एक रवया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिसकै जिस अंतर भौ भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार ना उतरिया कोई भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै जिस तू अपनी कृपा करह तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे हर पाया प्रभ अविनासी हर आप करतै पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बणी खिन खिन निमुख विखा हर हर भगत बणी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लय सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करह क्या किस पास मांग है सब भाग सतगुर पिछे पई जगातिया अपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरी उठ गई गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थे हो गुआया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुर बचन नानक हर भगत लही।

कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई।

प्राण हित चिता, प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर, किन साध संग मन जिता, कहो नानक जीअड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, ढाक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते, उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कह तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निमका, केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन राम नाम नित गावियरी, अगम अगोचर ना जाई हर लखिया, गुरपुरा मिले लखावियरी रहाओ, जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लावियरी, सब को भगत करे हर केरी, हर पावै सो थाए पावियरी, हर हर नाम अम

गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय हर।

राम रमहो रे अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

आई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अम

तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

अहम बुद्धत जावहु अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाउ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग न निबहत।

कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चालस साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाओ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह

प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध धरी केदारा महला पंजवां प्रीतम बसत रिद मह खोर परम पीत नवार ठाकुर गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह धारियो नहीं बिखे बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मितन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाओ, खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत, आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत, ताज गोपाल जे आन लागे, से बहु

आउ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती काता हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी।

दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह न जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावै ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

आया चौथे पद को जो नर कीनै तिन ही परम पद पाया तीर्थ वर्त नेम सुच संयम सदा रह निहकामा तृष्णा अर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा जेहे मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बन गया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आप है रत्न जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै ता मन खीवा पाई

पद है अमरेऊ राम भगत बसेख रहाउ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी।

होए। क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए। रहाओ जो किस करना सो तेरे पास,

मन जोगी मन बिनस बेयोगी मन समझै गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब भरपुर लीना सात शब्द निस्तारा पैरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं ता नहीं ना जर जीतिया सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़ै जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कभू ना छूटस बिरथा जन्म पयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी बहरे करन अकल पई होशी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंध ना सूझिया रह उदास आस नरासा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी भैरो महला पहला पूंदी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री धुंद करन पये बहरे मनमुख नाम ना जानी अंधले क्या पाया जग आई राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जिहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पये कदे होहे ना नीके अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल समताए अन को दर कर कबहू ना जानस एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा भैरो महला पहला सगली रैन सोवत गल पाही दिन सजन जाल गुआया खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगते उपाया मन रे क्यों छूटस दुख भारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी मन अंधै सिर धंधा काल बकाल सदा सिर तेरै बिन नावै गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंध लो धंध कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूणे शब्द बीचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने भैरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती राम रसल रंग राता अवर ना जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सो जाने ऐसा मैं मन भावै आप मार अप

जाको राखै अपनी सरनाई, साची लागै साचा फल पाई। रे जन कै स्यो करहु पुकारा, हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा। रहाउ एहो आकार तेरा है तारा, खिन मै बिनसै करत न लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया।

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे, औखे होवै चोटा खाहे, आपे करता देवै सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बीचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नामे लगे प्यार, रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसै सहज सुपाए, गुरमुख नाम वसै मन आए, आपे वेखै वेखणहार, नानक नाम रखो उर धार। भैरों महला तीजा, कल युग मह राम नाम उर धार, बिन नावै माथै पावै शार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई, रहाउ राम नाम जन भालै सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए, हर का पाणा मन्नै से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान, सो सेव हो जो कल रहया तार, नानक गुरमुख नाम प्यार। भैरों महला तीजा, कल युग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार, रहाउ तन मन खोज करै मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तेहो लोए, कल युग मह हर जियो एक, होर रुत ना काई, नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा, कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई, मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हऊ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहाउ, सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई, त्रै

माने आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिर कारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले।

गुरमुख मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सोजी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाई अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाऊ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौण रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै पीव

सच्चे पातशाह ने तरिया तर पनाह खुदाई गरीब नवाज दिन रहन ते आए नानक को खुद खसम मेहरवान अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण भैरो महला पंजवां साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवां सतगुर सेव सर्ब फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए पतत पावन प्रभ तेरो नाओ पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ रहाओ साधु संग होवे उधार सोभा पावे प्रभ कै द्वार सर्ब कल्याण चरण प्रभ सेवा धूर बांछ सब सुर नर देवा नानक पाया नाम निदान हर जप जप उदरिया सगल जहान भैरो महला पंजवां अपने दास कहो कंठ लगावे निंदक कहो अगन मह पावे पापी ते राखे नारायण पापी की गत कत हूं नाही पापी पचिया आप कमाए रहाउ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरध प्रगटाया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहया समाई नानक दास हर की सरनाई राग भैरो महला पंजवां चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा कमन बिख्या रस माता रे मन मेरे तू गोविंद भाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मन मुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदह नगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवां बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग पेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अष्टी

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जाने सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाई, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा, द्वितीया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। भैरू महला पंजवां।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हों त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे।

बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया। भैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज, चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबह ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाउ। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा, चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सद तनवंता, चीत आवे ता सद निपरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे, चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया, चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अभनासी, कुटुंब हमारा निज घरवासी, हम सुख पाया।

ये अंते अपूछे राज हमारा सद ही निश्चल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जोगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमारी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूत एक रंग लीने भैरू महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते हम अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले ना ढोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना केराया तिस भाणा सूके काष्ट हरिया तिस भाणा ता थल सिर सरिया तिस भाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन सीतल मन अमृत बूठा पार ब्रह्म गुर भये दयाला नानक दास देख भये निहाला भैरू महला पंजवा सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख बधाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर कह हो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद भैरू महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट भया नाम लैत पाप तन ते गया नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठसठ मजनाया तीर्थ हमरा हर

नाम गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाव नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना नाम लै

रहत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवां, नमस्कार ता को लख बार। एह मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊने सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह न थावे को दीनो थान। खिन मह न माने को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा।

मोहे दुहागने आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद, जा को प्रगट भये गोपाल, ताकै दर्शन सदा निहाल, सर्व गुणा ताकै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन सीतल हर हर जपना।

आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर परे, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हारे, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाई, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार ना जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प नुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार रहाउ, जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगा जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरा की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

सुख होए, कर कृपा जा को मेले सोए, रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे, जाका परवासा सब घट माए, प्रगट भया साधु कै संग, भगत अराध अन दिन रंग, देंदे तोट नहीं पंडार, चिन मह थाप्यो।

की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

अणहुंदा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निरवैर सो निस्तर जो पूजे पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाई मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारे वेद अर नाद

मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगति लावो, नमाणी को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसे, जाने अपने कह हर मन बसे, पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान, तत ज्ञान हर अमृत नाम, कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए, पैरो महला पंजवां, संत मंडल में हर मन वसे, संत मंडल में दुर्त सब नसे, संत मंडल में निर्मल रीता, संत संग होए एक परीता, संत मंडल तहा का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ, रहाओ, संत मंडल में जन्म मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी, संत मंडल का निश्चल आसन, संत मंडल में पाप बनासन, संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवां, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होए, निकट न आवे ता कै जाम, रहाव जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए, रहाउ अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

तै धन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारी नाम औखद मन पीतर सारी गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो।

आवण जान रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण करावनहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

सोवै हर सिमरन छाड परम गत चाहै मूल बिना साखा कत्या है गुरु गोविंद मेरे मन त्याई

का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतर है दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरो महला पंजवां गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लई दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिन मह बिन स्यो महापरेत आठ पहर हर हर

करन कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर चरना, रहाऊ पूर्ण काम मिले गुरुदेव, सब फल दा

पूरन मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोई नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सोतनवंता जिस बुद्ध विवेका सोकलवंता जे सिमरै स्वामी सोपतवंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया।

हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माहे अकेला। जात अजात जपै जान कोई, जो जापै तिसकी गत होए।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो परखारथ, प्रभु हमारा सार

त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम। जन का दर्श बांछे दिन राती हुए पनीत धर्म राए जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अवमान। ऐसे संत पीतह वड भागी नानक तिनकै सद कुर्बान। पैरु महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ पाखे। चक्कर बनाए करे पाखंड चुर चुर पचे जैसे त्रय रंड। हर के नाम बिना सब झूठ।

कुदरत नहीं जानै, लीपै थाए ना सोच हर मानै, अंतर मैला बाहर नित धोवै, साची दरगह अपनी पत खोवै, माया कारण करै उपाऊ, कबह न

पिंड तन तिस की रास सोई मेरा स्वामी करन हार कोट बार जाई बलिहार साधु तूर पनीत करी मन के विकार मिट है प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ जाके ग्रह में सगल निदान जाकी सेवा पाई है मान सगल मनोरथ पूरन हार जी प्राण भगतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीव है।

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक।

जो तुर लिखिया सो आए पौता जन सिंह वाद रचाया। पिता प्रहलाद सिंह गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दा।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भव करे ना साके जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वड़ियाई जन्म जन्म के किल विख दुख काट है दुबदा रती नाराई हम मूड मुगद किस बूझ नाही तू आपे देह बुझाई जो तुद पावै सोई करसी अवर न करना जाई जगत अपाए तुद

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजन पार न पावह कबही डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे निवलाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उर तारे भैरों महला पंजवा अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

वे परवाह। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो सत्या साह, नाम हीन नाही पत वे साह। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल।

कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बसत हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवे आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवरना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जामी।

महर पिस संग मन राती रहाओ, अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार, अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे, अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा, अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत, अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर, अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ काट काट दीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा, अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे, अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक, चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई, भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किस गुण बिचार चले जुआरी दोए हाथ चार मैला ब्रह्मा मैला इंद राव मैला मैला है चंद मैला मलता यो संसार एक

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

मत हमारी हमरा झगड़ा रहा ना को पंडित मुल्ला साडे दो रहाओ बुन बुन आप पहराऊ जह नहीं आप तहां हुए गाँव पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया हृदय।

जो निर्धन सर धन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दो

सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेह रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई आवे अंत ना भजया।

पार, एत ऊत की सोजी परै, कौन कर्म मेरा कर कर मरै, निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान।

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रियंग माया मह खापे

ताती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपेर खीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मिट जाए, तब प्रभ काज सुआ रह आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरहो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग

पार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिव लाए, सतर साई सलार है जाकी, सवा लाख पैगंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर।

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जान गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रग राया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रय स्थान तीन त्रय खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

मन अस फिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उच्चरे, जो जाचो तो केवल राम।

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिरह, इंदर कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार।

निकट बसै नर हरि जो ना पुजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाऊ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए ना मैं दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै ना मैं हर आगे धरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ता को करो शिंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ बात।

सर्ब जाई उस्तत निंदा करे नर कोई नामे श्री रंग पेटल सोई कबहू खीर खांड की हो ना पावे कबहू घर घर टूक मगावे कबहू पूर्ण चले बिनावे ज्यों राम राखे त्यों रही है रे भाई।

भगत जना को देहरा फिरे, भैरो नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसी।

संडा मर का जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाव बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै को पियो, मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाख। हर नाखश जिन नखह बिदारे हो, सुर नर किए सनाता। कह नाम देहो हम नर हर त्यावे, राम अपै पद।

वाई ना तर गर्दन मारो ठाए बादशाह ऐसी क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवै कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ियो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह। सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन धनी। पाखन तन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कह ता धरन अकोडी करूं कह ता लेकर ऊपर धरूं।

तुहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की घट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

सहज निकसाई। जो गुरुदेव ता अठ सठ नहाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया, जो गुरुदेव ता द्वादश सेवा।

पौ जन तर ज्यों गुरदेव ता जन्म ना मरे। ज्यों गुरदेव अठ दस व्यवहार ज्यों गुरदेव अठारह भार।

कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाओ सो मुन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक सुमाए मन का सुभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाए ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मथे सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाउ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर पोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन।

जात काजी मुल्ला हुवे सेख जोगी जंगम भगवे पेख को गिरही कर्मा की संद बिन बूजे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सिरकार करनी ऊपर हो अगसार हुक्म कर है मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कै रमैया नेड़ नाहि जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

गोडोह धरती पाई, ज्यों गोडोह त्यों तुम सुख पावहु। किरतना मेटिया जाई, बगले ते पुनः सुलाह हुऐ, जे तू करह दयाला। प्रणवत नानक दासन दासा, दया करहु दयाला। बसंत महला पहला खिंडोल, सोहरड़ी वत सब किस सांझी। पेव कड़ै धन वखे, आप कचजी दोष ना देऊ, जाना नाही रखे। मेरे साहिबा हौ आपे परम भलानी, अखर लिखे से ही गावा, अवर ना जाना बाणी। रहाऊ कढ कसीदा पहरह चोली, ता तुम जाड़ हो नारी। जे कर राख है बुरा ना चाख है, हो वह कंत प्यारी। जे तू पढ़या पंडित बीना, दोए अखर दोए नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। बसंत हिंडोल महला पहला, राजा बालक नगरी काची।

रहाउ। पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया, चंद सूरज दुए कर ही पीतर

न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होए ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उच्चरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पा

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा।

प्यारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारी जन नानक उर हरे अमृत तारी।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई, मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई, बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आई, गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचे प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नाम सूका संसार अग्न तृष्णा जलै वारो वार सोई करे जे हर जियो पावै।

मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुरु पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बन राय गुरमुख बिबसै सहज सुपाय अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचो जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईए नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिए शब्द कमाई बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे एको चेता फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया।

मन निर्मल निर्मल सच सोए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक संजान, हर रस चाखै ता शुद्ध होए, नानक नाम रते सच सोए, बसंत महला तीजा, नाम रते कुला का करह उदार, साची बाणी नाम प्यार, मन मुख भूले काहे आए, नामो भूले जन्म गवाए, जीवत मरे मर मरन सवारे, गुरु कै शब्द साच उर तारे, रहाउ गुरमुख सच भोजन पवे।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

बहु अभिमान अपनी पत खोए सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया बाहर जांदा घर मह आणिया घर मह वस्त अगमे अपारा गुरमत खोजह शब्द बीचारा नाम नव निद पाई घर ही माहे सदा रंग राते सच समाए आप करे किस करण ना जाए आपे भावे लए मलाई तिस्ते नेड़े नाही को दूर नानक नाम रहया भरपूर बसंत महला तीजा गुर शब्दी हर चेत सुपाई राम।

पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम अपाव कर थाकी, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया।

नानक शांत होवै मन अंतर, नित हिरदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई। हम कीरे किरम तुमन से, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा। गुर सत गुर चरण हम बनसे, गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृपसे। जन्म जन्म के किल विक मन भरिया, मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाओ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जपियो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते। ज्यों जल कमल प्रीत अत पारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी,

काल दुख पानी हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाइय हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विटोह घुम वाइय जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लाइय जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर पाइय बसंत महला पंजवां घर पहला दो।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जां के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

नीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर दान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

प्रभ आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताय, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवा गुरचरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रव करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे।

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवां घर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो हो।

धर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेलै आपे देखै हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेलै सो जिन बाजी घर आया।

संग तेरा हर बसत मीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

काकू मन केर बरखस बाणी बुद्ध बदाहेर मातर बूंद ते धर चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर नाम रतो चाहो तुझे ओर नाम दराए चले सो चोर पत खोई बिक

श्री राज कुवार नाम भणहु सच दूत सवार प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो भरम से आए जाए अत लुब्ध लुभानो बिखम माए नह अस्थर दिसै एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझस साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार मैगल ज्यों फासस काम हार कड़ बंद

दुख कणो मरिय करतारा, बिन प्रीतम को करे ना सारा, सब उत्तम किसे आखो ही ना, हर भगती सच नाम पतीना, रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते।

गया कीता, हरख सोग ते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दी या सत अमृत।

बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करतार गुर

परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पतीजै करण हारा नानक भूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला।

थाप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परमहीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

पार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंट सलाम करहंगी कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक उपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आण सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज

रहंब खीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तेल अपने।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गन का उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर कियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तव नह संगाई विख का माता आवे जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार काम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

कर कृपा लड़ ले हो लाई, नानक दास प्रभ की सरनाई। बसंत की वार महल पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम त्याई कै हो हरिया पहाई, कर्म लखन तै पाई एह रुत सुहाई, वण त्रिण त्रे पवन मौलिया, अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ, दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ, जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ, कितों उपजै कह रह कह माही समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कहन त्याइन सुन नित से भगत सहावे, अगमे अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे, सच पूरै गुर उपदेसिया नानक सुनावे, बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया।

दारल दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए रहाउ। सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बन जारे पांच, वरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बन जकीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बन जा रहा हाथ चार।

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सूचे।

मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाऊ एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

कैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए।

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवै बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ राम रहिया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भ

रूब राज तू तिस ते खरी उतावली रहाउ, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस, आप तन काजो करे बीचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, उत्तर कलत्र का करह अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसह पकार है पियो पियो, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कहर वदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल, इस कर्म है।

द्रौपदी महला पहला घर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद अपने ठाकुर की हों चेरी चरण गहे जगजीवन प्रभ के हों मैं मारन बेरी रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझस शब्द बिचारी मन मुखहीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे हों मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकुल निरंजन स्यों मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर कै नाम रत्ती सुहागन नानक राम पतारा सारंग महला पहला हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापै जिहवा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै तरवर बिरख बिहंग पुयंगम घर पेर तन सोहागै कुचिल करूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा रहाउ इन गिद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन मानै अभमान ना ताको हिंसा लोभ वसारी सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारी जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मूप सारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रहाउ सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर अठ सत तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए धूर दुर्मत बिकार मलीन मत होची हिरदा कसुद्ध लागा मोह कूर बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन कौ बलिहारी भवजन जगत न जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ हिरदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी अन दिन राम नाम जप हिरदय।

नीन भये गुर आगै तिनके दुख निवारी आन दिन भगत करह गुर आगै गुर कह शब्द सवारी हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया उइ पावह मूख दुआरी सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम आधारी तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी मन मुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उबहारी सार महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई रहाओ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति ज्योत मलाई जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाद लगाए हिरदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए नानक नाम

चित लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रहाव। दीन दयाल हो जन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख मिलया सुख।

हृदय हर हर पानी पंच जना गुर वस गतियाणी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाछ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै

लै झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल जिन राम नाम आधार। सारहु महला चौथा कर तीजा धुपदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे पूत झगरत हो संग बाप जिनके जने बडीरे तुम हो। तिन स्यों झगरत पाप रहाओ जिस धन का तुम गर्भ करत हो। सो धन किसह ना आप खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस।

आप अपदेश करत नानक जन तुम को जो सुनो तो जाए संताप। सारंग महला चौथा घर पंजवा दो पदी पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात रहाव। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर

सब सृष्ट का प्रभु मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सार महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राख विच कल युगे अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाउ जाको कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराउ।

तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्स मन चाओ। सारंग महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा कर।

रह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुरु बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराद एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजे हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख तेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे बिन पिर सबै बिख लाग्यो पूछो पूछो दीन भांत कर को कह प्रिय दे सांग्यो हियो देव सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राख्यो चरण बंदना मोल दासरो देव साध संगत अरदाग्यो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खाग्यो दृष्ट पई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखे अतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बीसर ठाकुर प्यारु तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजे साध संगत कृपानंद नानक पूर रहो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते पवह तराय रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पार है निर्वैर है संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग मोहल्ला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लही है रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वडभागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्ब मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जां कै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासे जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाउ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शद खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवां रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवां क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जिहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सार महला पंजवां वाह अवसर कै हों बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाउ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संतरे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सार महला पंजवां मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास कर कृपा तेरे चरण त्याव नानक मन तन दर्श प्यास सार महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए।

अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो हुए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आनना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलख सुख साध समागम कोट बैकुंठ है पाए रहाउ दलाब देह जप होत पनीता जम की त्रास निवारे महा पतत के पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाईए वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राखियो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठियो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राण पति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगे पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट न करे रुचांगे हर रस चाहे प्रिय प्रिय मुख तेरे जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे।

जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना। तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना। पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना। सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा। विसरो धंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ। हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग नसंगा। निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी। रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुण सुजानी। जे घर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी। उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ। बिखमथान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुँ।

0: नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना
1: प्राण दान गुर पूरे दिया
0: उर्जायो ज्यों जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवां अब मोहे धन पायो हर नामा पये अचिंत त्रिशन सब बुझी है इहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खो

ते दुख सहामा गोबिंद भजन के निरपै व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकर प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्ब प्रित पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे तास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थ होहं सारंग महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजो नी संभव सर्व थान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियरै बसेओ सगल भूख मेरी लाथे रहाओ कृपा निधान।

सुबराथी नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारी मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाओ, प्रव सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यो रुच नहीं राई, मोहन स्यो बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यो बन आई, सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई, सारंग महला पंजवा, वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ, हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकी, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरनी पाइए, किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ।

सूझै प्रभ बिन कहो को किस पह जासी ज्यो जान हो त्यो राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझे सुमहारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यो जान है त्यो पारे रहाल जब भूखो तब भोजन मांगे अघाए सुख सघारे तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारे नाम न बिसरे तब जीवन पाई है

सहज सहज गुण गायो रहाव, गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहु तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो, नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज समायो, करना आप करावने आपे, कहो नानक आप आपायो, सार महला पंजवा, अमृत नाम मन है आधारो, जिन दिया तिस कह कुर्बान, गुरपूरे नमस्कारो रहाओ, बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारो, आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन रंकारो, एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंडू कारो, आदमा बेअंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारो, सार महला पंजवा, बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्व सुख ताहू कै पूरन, जां कै सुख है हरि रहाओ, मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद कना, बड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कमन पना, थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारी, कहो नानक ते पवन पवित्रा, जा मह संत तुम्हारी, सार महला पंजवा, रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही।

जह पारी तिन स्यों राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवां मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना शोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारंग महला पंजवां।

के हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है वह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइए बड़ भागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारू महला पंजवा, करहो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पतत पनीता। कहो नानक जाके बड़ भागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जन आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जस सब मैं जा को छायो। संत संग रंग तुम किए, अपना आप दृष्टायो।

प्यो दिन राती। गुर के चरण मन धारिया, गुर की धूर करो नित मजन, किल विख मैल उतारिया, गुर पूरे की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्व फला दीने गुर पूरै, नानक गुर निस्तारिया। सारंग महला पंजवा, सिमरत नाम प्राण गत पावै, मिटह कलेश त्रास सब नासै, साध संग हित लावै रहाउ, हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, ताज अवमान काम क्रोध निंदा, बास देव रंग लावे, दामोदर दयाल अराधो, गोविंद करत सुहावे, कहो नानक सब की होए रेना, हर हर दर्श समावे। सारू महला पंजवा, अपने गुरपूरे बलिहारे, प्रगट प्रताप कियो नाम को, राखे राखन हारे रहाउ, निरपौ किए सेवक दास अपने, सगले दुख बेदारे, आन अपाव त्याग जन सगले, चरण कमल रिद धारे, प्राण आधार मीत साजन प्रभ, एकै एकंकार, सब ते ऊच ठाकुर नानक का, बार बार नमस्कार। सारंग महला पंजवा, बिन हर है को कहां बतावहु, सुख समूह करुणा मैं करता, तिस प्रभ सदा त्यावहु रहाउ, जा कै सूत परोए जनता, तिस प्रभ का जस गावहु, सिमर ठाकुर जिन सब किश दीना, आन कहां पह जावहु, सफल सेवा स्वामी मेरे की,

चार मोहल्ला पंजवां ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया रहा।

माए आनंद आनंद गुण गाया बाहा पकर कड़ लीने अपने ग्रह अंध कूप ते माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिचरत आन मलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद प्राण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ सेव ब्रंच अर इंदर लोक तामह जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्चर हो प्रभु को नाओ रहाओ राम नाम रतन धन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मानो साचा एह सो आओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यो लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपे आओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साद अमृत रस कीर्तन हर गाइय अहनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाहे सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाइय घर लै आवहुलाद सब ते ऊच ऊच ते

ऊचो अंत नहीं मर जात। वर्ण ना साखो नानक महिमा, एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारी महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभु संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारे। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत परे पंडारी। कहो नानक सुबह।

सर्व प्रत पालक सर्व कटा आधारा कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड भागी एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाउ मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी सारंग महला पंजवा जाते साधु सरन गही शांत सहज मन भयो परगासा बिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देहो अपना बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो ज्योति ज्योत समही सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोबिंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनीजै श्रवणी माया करो भगवान आवत जात दो पाख पूरन पाइय सुख विश्राम सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी सारंग महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाई सगल घटा आधार नानक वाहो आहो कहो ताको जा का अंत ना पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरा पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम निवलाई संत संग बन आई जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिए हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ कहत सुनत किश शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दगद होहे खिने अंतर कोट दान इशनान रहाओ आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रचियो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन।

जंजाल रहाव, बिन प्रभ सेव करते अन सेवा, बिरथा काटे काल, जब जम आए संघारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल, राख ले हो दास अपने को, सदा सदा कृपाल, सुख निदान नानक प्रभ मेरा, साध संग धन माल, सारंग महला पंजवा, मन तन राम को व्यवहार, प्रेम भगत गुण गावत गीते, बोहत नह संसार रहाव, श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार, प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती।

हर के नामहीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर, मिलत अंध दुख घोरी रहाउ। हर के नाम स्यो प्रीत न लागी, अनक भेख बहु जोरी, टूटत बार न लागै ताको, ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवां, चितवो वा अवसर मन माहे, हुए अकत्तर मिलहो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाउ।

तेरी सरनाई, ज्यो भावै तिवै चलाई। सारंग महला पंजवा, मन रे नाम को सुख सार, आन काम विकार माया सगल दी सह शार रहाव। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी, नरक घोर गुबार, अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल, दीन कृपा तार, कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा, विराजित राम को प्रताप, आद बियाद उपाद सब नासी।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिठिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रवार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण कौ राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे चोट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कभू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां।

उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे। इहां दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे। प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी, कीता अपना पाया। नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया। सारंग महला पंजवा, कृष्णा चलत बहु प्रकार। पूर्ण होत न कत हो बात है, अंत प्रतिहार रहाओ। सात सुख न सहज उपजे।

चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवा रे पापी तैं कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद विकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा माई रे चरन है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात ना कही जल थल पेख पेख मन भिगस्यो पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा माई री मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खमारू रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर ना होत कारू चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारू सारंग महला पंजवा माई री आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहे रहाओ नाम बसार चलह अन मार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत ना आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीतिया बहुर ना जुवै हार आठ पहर कब के गुण गावै पूर्ण शब्द बीचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारंग महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारंग महला पंजवा।

कर मस्तक धार्यो मेरे माथे साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सब फल पाए रसक राम नाम त्याए अब चल नीम तराई सतगुर कबहू डोलत नाही गुर नानक जब भये दयारा सर्व सुखा निद पाही सारी महला पंजवा निभे नाम की सच खेप लाभ हर गुण गाए निद धन बिखै माहे अलेप रहाव जी जंत सगल संतोखे अपना प्रभ त्याए रत्न जन्म अपार जीते

मन मोहिउ अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोविंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक बिन हो आन ना जानो द्वितीया भाउ सब लू रहा। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खू। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलो सुख दाता बिन से हूं मैं हू। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिन से काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत यह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हृदय तार। गुर चरण बोहत मिलो भागी उतरियो संसार। जल थल महियल पूर रहो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाहा करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे। सफल दे तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले। नानक दास धूर जन बांचे उदरह लाग पले। सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख है कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वसे अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर द्वितीया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहा तू बैसह महा बिखिया मद चाखी रहा। कित है स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी। संतां बिन तै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संतां किने ना लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारंग महला पंजवा माई री काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपाली ने कर अपने उपजी दर्स प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी द्वितीया आस। महाध्यान अटवी ते काडे मार्ग संत कहियो। देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो। सारंग महला पंजवा माई री अरे ओ प्रेम की खोर। दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहा। प्राण मान पत पित सुत बंदप हर सर्वस धन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिस्ता क्रिम बिन हर जानत होर। पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्ब ला जोर। नानक सरण कृपा निध सागर बिन से आन निहोर। सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ। चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए। जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए। परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते
ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਜੋਇ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤ ਸਾਰ, ਹਰ ਬਸਾਰ ਜੋ ਆਨ ਰਾਚਹਿ, ਮਿਥਨ ਸਭ ਬਿਸਥਾਰ ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਭਜ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਪ ਹੋਵਤ ਖਾਰ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਸਾਏ ਹਿਰਦੈ, ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਮਾਰ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖ ਲੀਨੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਦਰ ਮਾਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਅਭਮਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਧਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹੁ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੀਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰ ਗਿਆਨੀ। ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨੀ। ਨਿਕਟ ਵਰਤਨ ਸਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਸਾਈ ਜਾਨੀ। ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਤੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਵਾ ਚਰਨ ਆਸਰੋ ਈਸ, ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੂ ਸਾਖ ਤੁਮਹਿ ਸੰਗ।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिखठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभु संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर शिवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिया हर संग संग खचिया जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारे महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए।

हर हरे हर मुखों बोल, हर हरे मन तारे रहाओ। श्रवण सुनन भगत करन, अनक पातक पुनः चरण।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सोउ जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

आई विषम भई गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन पहाई सहज समाध सदा निवहर सियो जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

किया, ऐसी गुरमत पाई। सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई, नानक हर बिन करी न जीवा, हर का नाम बढ़ाई। सारंग महला पहला, हर बिन क्यों तीरै मन मेरा, कोट कल्प के दुख बनासन, साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ। क्रोध नवार जले हो ममता, प्रेम सदा नौरंगी, अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया, हर निर्माल संगी। चंचल मत त्याग भव भंजन पाया, एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी, हर मेल लय बड़ भागी। अपरत सिंच पय सुपर सर, गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते निह केवल, आद जुगाद दयाला। मोहन मोहे लिया मन मोरा, बड़े भाग लिव लागी, साच विचार किल विख दुख काटे, मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पहु पंजन, अवर न जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया, हर रस रते अदखाई, एक सबिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार परे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथ

सूझै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै, नानक से जर थाए पए हैं।

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राव राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो।

काष्ठ संगे नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे कट कट कथा राजन की चाल है कर कर तुझह उमाहा जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा जो किछ करना सो आपे करना मसलक काहू दीनी अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा मन तन सीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करह अनक महेश बैस ध्यान करह अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भए निहाल सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया अब रस माने भोग कटाने आनना बिया कोथिया हर रंगी इक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता कौन उपमा देव कमल बढ़ाई पूर्ण पूर रहो सर्ब ठाई पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो करी मोहतक बेला आई अर्थ दर्ब सब जो किश दिस संग ना कछु हूं जाई कहो नानक हर हर अराध हो।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवरना कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी बेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जोग ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवै नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय

मोह वधाया, गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया, नानक सच वरतदा सब सच समाया। स्लोक

मत परवाना एहो नानक आख सुनाए करनी ऊपर हुए तपावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगति आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया श्लोक महला दूजा सा चले बन जा रहा लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त सुमाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े

आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्ध दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापे रूप ना जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने ओखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशांत आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूर्ख की गिरही का सतदान। राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान। पानी चेतना धूपै मुख पीतै तिख जाए। पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए। पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे। नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे। नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे। नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे। गुरमति नाउ पाईए नानक गुण गावे। सलोक महला पहला। दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार। दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार। दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलियो कोए। दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए। नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए। दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए। महला पहला। नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे। पशु पास कमावनी पी पास परिया दे। जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए। अगे लेखे मंगे है होर दसूनी पाए। पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे। नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे। नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे। नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे। नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे। सलोक महला पहला। कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल। कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए। माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम, नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी, नाए मने सुख उपज नामे गत होई, नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई, नाए मने पवजल लंघी है फिर बिघन ना होई, नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई, नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन दे वै सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे एक पैर ते आए, पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे, किस ऊपर ओह टिकटिक किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

मोहल्ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम त्याईंदे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा सतगुर सेवन से वड भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव, माया कै व्यवहारी, अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़ गवारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन हूं मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुत्ती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूकी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर पौड़ी, नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बद्दे मारी है ज्यों सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ पौड़ी, नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हउ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाई ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहे सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दरवाज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटी है

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वर्त आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजै पाए नाम वसारिया मन मूरख मिलै सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो न कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याएंदे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवंदे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलै सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ऊना परख न आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख न आवई ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै ना बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीहू गुठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए। हर तसै त्याव संत जन हूं जो अंते लय छाए, हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृप्तै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी, गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है जे सच रह लिव लाए। महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियान पहु मैं मेरी, बहु कर्म कमावे है लोभ मोहे व्यापे, हौ मैं कदे ना चूकै फेरी। नानक आप कराए करता जोत सपावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा, सच खाना सच पहनना सच नाम आधार, गुर पूरा मेलाया प्रव देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार, साधु संगत लग्या तरिया संसार। नानक सिफत सलाह कर

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो

मन भिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

चार गऊ बास कौ संत्या खीर गला बांध दोहे ले आहीर माया कारण श्रम अत करै सो माया ले गाडे तरै अत संचै समझै नहीं मूड धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस घना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

पार। पीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रत्न आचार। रहाउ दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई, सत संगत गुर प्यार। एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार। गुरमुख सिख सोई जन पाए, जिसनो नदर करे करतार। काया महल मंदर घर हर का, तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाई, हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला घर दूजा,

तब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावे सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निधान से तनवंत जिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला।

ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ

विचार एक गुरमुखे आप मलाया बख्शे भगत भंडार तू आपे सब किछ जानदा किसे आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नदरी पाया जाय अन दिन हर हर उच्चरै गुर कै सहज सुभाई।

दे त्रिपतास्ते सत्य नाम सुवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों हो आप गवाया।

अंतर वस्या अलाख्य पेवा गुरमुख होए लखाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाऊ। मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खेलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूं जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ मन तन भीजै एक लिव लागै सहजे रहे समाई। गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै एक नाम लिवलाई। गुर बचनी सच कार कमावै।

नानक कवन बिद करे क्या कोय सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेव है आप गवाए हौ तिन जन के सद लागो पाए हौ जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द मा

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाय, सत संगत की धूर परी उड़ नेतनी, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर

कीने तितने सिर कार लखावै हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारै लावै सतगुर हर हर नाम जरडावै हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई हर भौजल जगत तरावै रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभ पावै हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावै परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावै निर्जियो पूज है मड़ा सरीव है सब बिरथी काल गवावै ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है हर हर कथा सुनावै तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सतकर मुख संचो हो तिस पुन की फिर टोट न आवै सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावै मलार महला चौथा जिनकै हियरै बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हौ तिनकै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध भिन भिन काढ़।

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हिरदय बसहै नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कार्य सगल अरंभियो घर का ठाकुर का परुसा सुनिए बाजै बाज सुहावी।

सुरपत कर दोख जठर कौ भरते कृपा निद छोड़ आन को पूजे है आत्म घाती हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी टेक न काहू धरते रहाऊ त्याग स्वामी आन को चितवत मूड मुग्ध खल खरते कागर नाव लंग है कत सागर बिरथा कथत हम तरते सेव ब्रंच असुर सुर जेते काल अगन मह जरते नानक सरन चरण कमलन की तुम ना डार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

जो प्रिय संग राती ए हम मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे।

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा विसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत पयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठन भय सागर।

आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास

रब रहियो सब अंतर सर्ब रहिया पर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना कारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवह दास तेरे नानक प्रभ सरनाई मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवीजै दर्श प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मली जय रहाऊ खोजत खोजत मार्ग

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई गुर उपदेश हर हृदय वस्यू सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाऊ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करूं इशनान साची दरगाह पाई मान गुर बोहित भवजल तारन हार गुर भेटिया ना होए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जां को कर्म लिखिया तुर आई गुर मेरी जीवन गुर आधार गुर मेरी वर्तन गुर परवार गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रभ आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुखदाता।

तुद पानी नानक तिन कै सद कुरबाणी मलार महला पंजवां परमेश्वर होआ दयाल मेघ वरसै अमृत धार सगले जी जंत त्रिपतासी कारज आए पूरे रास्ते सदा सदा मन नाम संभाल गुरपुरे की सेवा पाया एथे उथे निबह नाल रहाउ दुख पन्ना पै भंजन हार।

राखे सब जंत, गुण गावहु नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जान है प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवां, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाई, साध संग सद हर गुण गाई, मन मेरे गुर पूरा सलाही, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाई रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाईए वड भाग काम क्रोध लोभ मन ते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभ सच अरदास।

अगुवाई कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने ब्रह्म बने।

मन अपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे पज शरण साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा प्रिय की सोब सहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी साध संग रामैया रस पायो।

रहाउ। दर्श सफलियो दर्श पेखियो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारी, विषम विषम विषम भई, अग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही, भगत टेक तुहारी, जन नानक शरण द्वारी, मलार महला पंजवां, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सगल भाग रहाउ। संत संगे मन परफड़ै, मिल मेघ धर सुहाग, कन घोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोह, त्याग माया तोह, मिल संत नानक।

गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापै कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मग ना चालन हार। जित कर वसै है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै भै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी। हिंद वरसै धरत सुहावी, घट घट जोत समाणी। कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी। सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी। जो किश कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए। हुक्मे भाता कार कमाए, एक शब्द राचै सच समाए। चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं। सब मह शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं। जामन मरना दीसै सिर उभो, खुदया निंदरा कालं। नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं। मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जानै। कंठे बैठी गुर शब्द पछानै, तू कैसे आड़ फाथी जाल। अलख ना जाचै हृदय संभाल, रहाउ एक जी कै जिया खाही। जल तरती बूढ़ी जल माही, सर्ब जी की ए प्रतपानी। जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फास पड़ी अत भारी। ऊड़ ना साकै पंख पसारी।

संसा जाय। सतगुर ते हर बुझिऐ गर्भ जोनी नह पाय। गुर प्रसादी जीवत मरै मर जीवै शब्द कमाई।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई। धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई। लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई। सतगुर विण किन ना पाया, मन वेखो हृदय विचार। वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार। मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाए। मल्हार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा। त्रै गुण करे विचार, बिन नावै जम डंड सह।

निज कर होवै वास, जम काल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनास। हर नावै नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नजर करे गुर भेटिया, हर नाम वसै मन आए। नानक नामे ही पत उपजै।

कमल प्रगास तित काट नामे नाम निवास हम मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहन आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाई से भगत सतगुर मन पाई अन दिन नाम रहे लिवलाई सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप वड्डा संसार गुर कृपा ते एहो रोग जाए नानक साचे साच समाए राग मलार शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै गोपाल गुण निध सदा संगे सर्ब गुण जगदीसरै मन मोहे लीना चरण संगे नाम रस जन माते

पतत पावन भगत वत्सल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्श प्यास हर जियो आप लेहो संहारी हर चरण कमल मन लीना।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया सच्चा तख्त निवास।

सच्चा सच्यार जिन सच वरताया, बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया, ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया, ना तिस बाप ना माए किन तू जाया, ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया, ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया, गुरमह आप समोए शब्द वरताया, सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला, वैद बुलाया वैद की

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदै लाए।

जो हर चरणी रहे निवलाय। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बणाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचों आप गवाई। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाई। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो गई।

मंग सी आप कराए कार, जो तिस पावे सो थी है हुक्म करेगा वार। आप छड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार, आपे वेख सुने आप सब सह दे आधार। सब मह एक वर्तदा सिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है

जल पाई विचो आप गवाई नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

बेनती करे कर कृपा देहो जी दान। जल बिन प्यास ना उतरै छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुख दाता बेअंत है गुण दाता निधान। नानक गुरमुख बख्श लए अंत बेली होए भगवान। पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार। त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार। गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर। जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार। जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। सलोक महला पंजवां रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरै नाउ। राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ। महला पंजवां रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन। नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन। पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई। जे सतगुर अगै घालिया पोहे ना सकै जमकाल। सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया। मनमुख बिन नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया। सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

सच सुमाया सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सोहागणी गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक फिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजई एक गावे है राग परियां राग ना पीजई एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजई एक अन्न ना खाहे मूर्ख तिना क्या कीजई तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजई कर्म बदै कैलो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पीजई हर भगती स्नेह गुरमुख की जई सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिऐ सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे उहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सख्त

अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा, अक डाली बह खाए खसमै भावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए नानक दुनिया चार दिहाड़े।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेवया तिन्नी सुख पाया।

शब्द सलाई है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल घटे दिन काल सिजे काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछे रोवह लियावह फेर बिन बूझे किस सूझे नाही मोया रोहे रोंदे मर जाही नानक खसमै एवै भावै सेई मोए जिन चेतना आवै महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुखदाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

अंध मन, मन अंधै तन अंध, चिक्कड़ लाया क्या थी, जा टुटै पत्थर बंद, बंद टुटा बेड़ी नहीं, ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे नाम विण, केते डुबे साथ, महला पहला, लख मन सोयना लख मन रूपा, लख साहा सिरसा, लख लश्कर लख वाजे नेजे, लखी घोड़ी पातशाह, जिथे शायर नंगना, अगन पानी असगाह।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया सो

पार हुए फक्कड़ पिटे अंड चुप्पे चंगा नानका विण नावे मोहे गंद महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

कथनाकार सब नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख हुए महला पहला।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावन तत्या।

वैस नक पकड़ है राती मानस खानी हर कर लोका नो दिखलाव है ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे सियो क्या कही है कह ना कह आ दूजे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जीए लया वसेरा अपाख पक है पाख तज छोड है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे मास प्राणी मास कतेबी चौहो जुग मास कमाना जज काज व्याह सहावे उथे मास समाना स्त्री

अनक माद कपाह तोयो हो त्रि पवन गन्ना तुआ आख हो बो बिदह छा तू है बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो सन्यासी नानक कह विचारा पौड़ी हो क्या आखा एक जीव तेरा अंत ना कि नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझ ही माहे समाया एक भगवान वेश कर भ्रम दे बिन सतगुर किने ना पाया देश दसंतर भव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल विस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा।

खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

जाचै पस्मति सुएसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वै हेला एते जी जाचै है करी।

लोक प्रसिद्ध कबीरा, जाके कुटुंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है। अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत, तिन तने रविदास दासान दासा मलार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते, साध संगत पाई।

चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपास अन दिन अंत पया मन बिगसिया

कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंदप हर साक।

शरीर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाओ स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर हम

तिहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

भाग हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत हों बल बले हों बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी कीचै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस रहाओ हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जल राम जपह ते उत्तम तिनको हो कुम कुमे कुम कुम।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित

पग जात जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहो बहो विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जात कर भेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ है आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगादो मत गुरमत हर प्रबलादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ दिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भये कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति।

कुल सगल तरादो कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधार कोट पराधी खिन महतार जा को चीत आवै गुर अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर

पंजवा तीर्थ प्रभु की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहां चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा तृष्णा बूझी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म।

जां कहो सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कह हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

तेरू जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औख दिखायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते सात संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

नो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख जाए पुन दान अनेक क्रिया साधु संग समाए ताप संताप मिटे नानक बहुड़ काल ना खाए। कानड़ा महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कथिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइए मान रहाउ आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पनीत होहे खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ता की दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। कानड़ा महला पंजवा साध संगत निद हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ संतरेन नित मजन करे जन्म जन्म के किल बिखरे संत जना की ऊची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ ईत ऊत कहां लुभाव है एक स्यो मन लाए महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय सगल त्याग सरण आयो

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासह रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नान

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ़ो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

समानु मुख बकनो मन मान रहाऊ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक का

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

तू गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकि गंठ नहीं शोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

काम बढ़ाई, भौजन बिखम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, भयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ भये कृपाला, मगन भये ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कह संगे, थोरे काज बुरो कह फेरो रहाऊ, नाम बिना जेतो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ फेरो, आगे दृष्टि आवत सब प्रगट, इहां मोहयो परम अंधेरो, अटकेओ सुत बनता संग माया, देव नहार दा तार बसेरो, कहो नानक एकै पार उसो, बंधन काटन हार गुर मेरो, कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरे गाहियो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मटाहियो, भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाद समाहियो, कौन कह तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहियो, कृपा निदान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहियो, कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिनसै मोह भरम दुख पीरै रहाओ, सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाई, साध जना मिल हर जस गाई, रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो, पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना, कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ, करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दुख सगल मल हरसन, पावन धामन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूर्ण अबनासी, आन अपाव थकत नहीं करसन, कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहं मत अनरत कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार बिदहीनत, माम मत मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उधर सरन परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाऊ, गोविंद त्याग आन लाग है, अमृतो डार भूम पाग है, बिखै रस स्यो असक्त मूडे, काहे सुख मान, काम क्रोध लोभ व्याप्यो।

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नव निध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैनो देख साध दर्श।

टुलेरै, दर्शन प्यास बहुत मन मेरै, मिल नानक देव जगत गुर केरै, कानला महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

पीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अतरहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनू।

भरम सगल अभमान खन राम हल्ला पंजवा प्रभ कहन मलन दहन लहन गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ तटन खटन जटन होमन नाही दंड धार सुवाऊ जतन भांतन तपन भ्रमन अनक कथन कथते नहीं थाहा पाई ठाऊ सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाऊ कानड़ा महला पंजवा कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पावन भगत बच्चल पै हरन तारन तरन रहाऊ नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूर्ण दुख

जाय। पतत पावन बिरद स्वामी उदरत हे हर त्याय रहाओ। सहसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध। विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु। रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा। वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ। कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन सियो तात। मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बेहात।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुपाहे अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोलै, कानड़ा महला पंजवां, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरे, तौ मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवां, माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवो चरनार बिंद, सासन निसपोर रहाओ, लाए प्रीत कीन आपन, टूटत नहीं जोर, प्राण मन धन सर्ब सो, हर गुण निजे सुख मोर, ईत ऊत राम पूरन, निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक, बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां महन।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजी, नीच हर धार चवावै गु। राम नाम इक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गु। नाम सुनै नामो मन पावै, नामे ही तृप्तावै गु। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पांत बनावै गु। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवै गु। माया पटल पटल है भारी, कर घूमन घेर कलावै गु। पाप बकार मनूर सब भारी, दिख दुत्तर तरियो ना जावै गु। भौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावै गु। राम नाम हर पेटी है, हर राम नाम समावै गु। अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हमै मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यों लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करै अभिमानी कड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या हो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत शोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूजै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै गु।

यह तालकुंडे गुरियंकस शब्द दरडावैगु रहाव चल तो चल चल दह दह दिस गुर राख हर लिवलावैगु सतगुर शब्द देर दे अंतर मुख अमृत नाम चुआवैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिवलावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुरखिन मह मार कढावैगु सत संतोक धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गु रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गु ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैजर खावै गु। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गु ज्यों अमरीक अमरा पद पाई सतगुर मुख बचन त्यावै गु। सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गु दयाल दीन भए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गु। सतगुर सरन पए से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गु जे को सर संदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गु। हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावै गु। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह हर गल मेल मेल मलावै गु। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचै नाम त्यावै गु। हर हर रूप हर रूपो होवै हर जन को पूज करावै गु। साकत नर सतगुर नहीं पिया ते बेमुख हर परमावै गु। लोभ लहर सुवान की संगत बिख माया करंग लगावै गु। राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावै गु। नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सत संग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सत संग पाईऐ हर त्याईऐ, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांच है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपालै, जप तप संयम पूरन कालै, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइयै नित त्याइयै, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चालै, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पालै, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आई। बेकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी, पुरख परमानंदा। कानड़े की वार महला चौथा, मूसे की वार की धुनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, राम नाम निदान हर, गुरमत राखे उर तार। दासन दासा हुए रहो हम मैं बिखिया मार, जन्म पदार्थ जीतिया कदे ना आवै हार। तन तन वड भागी नानका, जिन गुरमत हर रस सार। महला चौथा, गोविंद गोविंद गोविंद, हर गोविंद गुणी निदान। गोविंद गोविंद गुरमत त्याई, ता दरगाह पाई मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप, मुख उजला प्रधान। नानक गुर गोविंद हर, जित मिल हर पाया नाम। पौड़ी तू आपे ही सिद्ध साधको।

आप वर्तदा तू आपे करह सो हो गया। सत संगत सत गुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलो गया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोह गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोई। हउमै ममता नास होए दुर्मत कड्डै धोए। नानक अन दिन गुण उच्चरै जिनको धुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए। हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवर ना कोई। जो हर प्रभ भावै सो थीऐ जो हर प्रभ करे सो होए। कीमत किनै ना पाईया बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू घट घट हर रंग रंगना। सब त्यावह तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाचह सब मंग मंगना।

हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावह मान। जो इच्छा है सो फल पाए सी, गुर शब्दीन लगे ध्यान। किल विख पाप सब कटी है, हों मैं चुकै गुमान। गुरमुख कमल विगसिया, सब आत्म ब्रह्म पछान। हर हर कृपा धार प्रभु, जन नानक जप हर नाम। महला चौथा, हर हर नाम पवित्र है, नाम जपत दुख जाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन मन वसिया आए। सतगुर कै भाणे जो चले, तिन दालद दुख लह जाए। अपने भाणे किने ना पायो, जन वेखो मन पति आए। जन नानक दासन दास है, जो सतगुर लागे पाए पौड़ी। तू थान थनंतर भरपूर है करते, सब तेरी बणत बनावनी। रंग परंग शिष्ट सब साजी, बहो बहो विद भांत उपावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है, गुरमति तुदै नावनी। जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै, मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो हो राम रमो, श्री राम रमो। जित दालत दुख भुख सब लह जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस। हर अमृत हर उरतार, विच संगत हर प्रभु वरतदा। बुझो हो शब्द विचार, मन हर हर नाम त्याया। विख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेतेओ। तिन जूए जन्म सब हार, गुर टुठे हर केताया। हर नामा हर उरतार, जन नानक ते मुख उजले। तित सच्चे दरबार, महला चौथा। हर कीरत उत्तम नाम है, विच कल युग करनी सार। मत गुरमत कीरत पाई है, हर नामा अर हुर हार। वडभागी जिन हर त्याया, तिन सौंपया हर भंडार। बिन नावे जे कर्म कमावने, नित हों मैं होए खुआर। जल हस्ती मल नवाली है, सिर पी फिर पावे शार। हर मेलो सतगुर दया कर, मन वसै एकंकार। जिन गुरमुख सुन

भे वरतै सब जगत किया बनजारा सब जोत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सत गुर कै पग पाह सत संगत हर मेल।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावह हर अपरंपर हर हर हर।

हरे आपे घट घट वर्तदा हरे आपे आप बेअंत हरे आपे सब रस भोगदा हरे आपे कवला कंत हरे आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव दान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव है हर गुण शंत महला चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै लिखत सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रब सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन

हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जपियो मन कीता महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वस्या बट भाग गुर पूरै देखा लिया नानक हर लिव लाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पानी हर कथा सुनावहु मेरे गुर सिखो मेरे हर प्रभ अकथ कहानी क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाणी तिन विटो नानक वारिया जो जप दे हर निर्बाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाई नाम चितवै नामो

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाम गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघार।

जगदीशर करते अपरंपर पुरख अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्यागो हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर निव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जपो हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदै नो आराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम सम्हारे। जन नानक मंगै दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण आराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार होए, हाटै जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर। सब पवो हो शरण सतगुरु की, बिनसै दुख दागर। श्लोक महला चौथा, हौ टुंडेंदी सज्जना, सज्जन मैंढै नाल। जन नानक अलख ना लखिया, गुरमुख दे दिखाल। महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन सच्चै, तिस बिन रहन ना जाई।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगीत राही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस बलिहार।

अंतरजामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाउ बसै कटा कट लीप ना शिपै बंधन मुक्ता जात ना दिसै पानी माहे देख मुख जैसा

आरे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाऊ गुर के पग सिमरों दिन राती मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां पया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम ते आयो सब किल बिख दुख लाथे रहाऊ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे हैं प्रभ दिखंथे तुम बड़ दाते जी जीन के तुम जानो हो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावै प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पौ अर्प अरापौ कोई मिले प्रभ मिलथे हर के गुण बहुत बहुत बहुत सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगे तह छूटै नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हौ मैं मैल लग थई गुर धार कृपा हर जल नावाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंति अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गावह हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुढ़

सेवा कर अच्युत जो सब ते ऊच ठाकुर भगवान हर सेवा ते काल जोहे ना सकै चरण ही आए पवै हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ताको समत दे पहकान ताको कोई अपर ना साकै जा की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहि दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावह भगत तिना हर पावेंगे ज्योति ज्योत मलाए ज्योत रल जावेंगे हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे जन नानक सरन द्वार हर लाज रखावेंगे छका एक कल्याण पोपाली महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम त्याया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरन जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक।

दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया।

दुर्गा कोट मदे मुक्त कहूं, कहो नानक नाम रस पाइए साधु चरण गहूं। कल्याण महला पंजवां प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासन

मन तन जापिए भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भई सदा सुख कल्याण रहाउ सर्ब कार्य सिद्ध भई गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरे आ करूं दिन रहन सेव नानक।

परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्व कटा के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अलक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक गटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन।

काढ़ तरी जय। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ, हर मांग है हर रस दी जय। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जय। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दी जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करी जय। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करी जय। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सत गुर पारस की जय। रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन की जय। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यो मरगाई पंक ना पी जय। चंदन वास पोयंगम वेड़ी, किव मिली है चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै। महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस न परस भये साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीत

राग राग प्रभाती बेपास महला पहला चौपदे कर पहला नाई तेरे तरना नाई पत पूज नाउ तेरा गहना मत मकसूद नाई तेरे नाउ मन्ने सब कोए विण नावै पत कबू ना होए।

जाई। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेरे अंधी वापरे सगल लीजे खोए। एहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाओ। पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करो।

जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार, जित तन नाम ना उपजै से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे, शंकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध भये उदासी, देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, तरिय साचा होई,

सेव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जां कै बरत नाही नेम नाही नाही बक बाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जां कै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर परवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कहिए सर्बे रहया समाय जो किस वरतै सब तेरी रजाय रहाउ प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुर उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

रहाउ। पंच तस्कर तावत राखी, चूका माने अभमान, दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती तान, दूध कर्म संतोख कियो कर, ऐसा मांगो दान। हिमा तीर्ज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला, आवत किने ना राखिया, जावत कि

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखार।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

कहावै सोई। प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पहंदै घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावै बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादी मारी छूटस साच नाई। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुखमूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

घर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु समनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहिया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावह चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहा ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराई बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवै साध मना रहाऊ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है तीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावै निरालंब निरहार निह केवल निरपहु ताड़ी लावै शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावै बाहर जातो ठाक रहावै गुरमुख सहज समावै सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

आचर है लिवलाई हर हर नाम जपहु जन पाई गुर प्रसाद मन अस्थिर हुए अन दिन हर रस रहया आगाई रहाउ अन दिन भगत करहु दिन राती इस जुग का लाहा पहाई सदा जन निर्मल मैल ना लागे सच नाम चित लाई सुख शिंगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवे सदा हर सेव पाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसै मन आई नानक नाम त्याए सदा तू सतगुर दिया दिखाई प्रभा

सच पाए। प्रभाती महला तीजा, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन तू राखन जोग। तुद जेवड़ मैं अवर ना सूजै, ना को हुआ ना होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों

अब एकसते उत्पत चले नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सहलाए पूरा भाग हुए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो जाए आपे साचा लए मलाए गुर की बाणी स्यो लाए प्यार एथै उथै हो आधार आपे देवै सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाणा नानक तिस कै सद कुरबाणा प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत

हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डै भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर किरपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रह।

मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवां बेपास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत रच जोत निवाजिया, सहजा धरत बर्तन कौ पानी, निमख ना वसार हो सेव हो सारग पानी, मन सतगुर सेव होए परम गति, हरख सोग ते रह निरारा, ता तू पावह प्राण पते रहाओ, कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत, सो हर सेव हो नीता नीत, तहां सखाई जह कोई ना होवे, कोट अपराध एक खिन मह धोवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवां, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के हाँ।

देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि, तिस गुर की हम

त्याग नाम हर जीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरह सवारिया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुर दीनी रास्ते।

जो तिस पावै सो पल होस, तिस गुर को हो सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम त्याई, ऐसा गुर पाई है वड भागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए, प्रभाती महला।

मोन ना पवे ईहा ऊहा चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजो।

मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक टूठे, प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै

हार रखन हार मन अराद प्रभु मेक संतरेन करो मज्जन नानक पावे सुख अनेक प्रभाती अष्टपदिया महला पहला बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा बौरी मन बौराया झूठे लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दिरडाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किश किया सोई जाने शब्द विचार पौ सागर तरे रहाउ माया संच राजे अहंकारी माया साथ ना चले प्यारी माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाई विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से

खंग करन है, खसम ना पावे साध, बिन नावे होर कमावना, फिक्का आवे साध, दुष्टि सभा विगुती है, बिकवाती जीवन बाद, ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सत

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाना बोली भाई सुपाई।

सरनाई, मनमुख मुगद आगे चेतै नाही, दुख लागे पछताई। आपे करे कराए करता, जिन एह रचना रचिय, हर अवमान न जाई जियो, अवमाने पै पचिय। भुलण विच किया सब कोई, करता आप न भुलै, नानक सच नाम निस्तारा, को गुर प्रसाद अखुलै। प्रभाती महला पहला, आखना सुनना नाम आधार, धंधा चुक गया बेकार, ज्यों मनमुख दूजे पत खोई।

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास, गुरमुख विरला चीने कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई, ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल, आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोई, बिन गुर सूझी किसे ना होई, आपे करे करावे सोई, झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे, एहो मन डोलत तौ ठहरावे, सच करनी कर कार कमावे, अंतर जूठा क्यों सोच होए, शब्दी तो वै विरला कोई, गुरु

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरै, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई है दरगा।

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगटी साची सोए रहाव। हर मंदर हो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जियो साजिया

हर मंदर एहो जगत है गुरबिन को रंदार दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंध गवार जिथे लेखा मंगी है तिथे दे जात ना जाए साच रते से उबरे दुखिए दूजे पाए।

मन लूट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजिए सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हऊ मैं मैल उतार सदा जागह कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ह मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाई हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई गुरमति मुख सोहणी हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हो मैं विच जागरण ना होवई

टिक एक सकी सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाई लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत घर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाठ न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी घर घर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यो हम भये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहुत पावस प्रभ सरबाग।

क्या सोई, तिस बिन बीजो नाई कोई, बैर विरोध छेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया,

आई प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल जन्म जन्म के मिटे बेताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ इशनान करीजा चरण कमल निम खरिदै तारी गोविंद जपत सब कार्य सारी उच्चे ते उच्चा प्रभ थान हर जन लावह सहज ध्यान दास दासन की बांछो तूर सर्व कला प्रीतम भरपूर।

तेरा पाना, जो इव बूझै सो सहज सुमाना। कहत कबीर किल बिख गए खीना, मन भया जग जीवन लीना। प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस

तेरे मन का परमना जाई रहा। पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

है आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बिखु बन बिखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक

कारण करते वस है जिन काल रखी धार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे

आदि कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुत है कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तन है किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुत है त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदय दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीपिया बैसवांतर है बहंत अगाहा तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्धयते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण रहंत स्वरूप।

ता सुख समूह अमोग दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं क्रोत पाशं क्रोध अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता रह नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निरतनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वच्छल करुणामय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समर्थं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरुखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते वृत्ता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहं तन निमरता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं शत्रु सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

जीहिपणिचो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीनस्य जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपं नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता विलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं

पाप्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तै पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बावन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सुरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है, चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं।

रंग दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है। ब्रह्म प्रयान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है। वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

दुत्त रहै। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है, भगत वचल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अचुत है, जेन कला धार्यो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं, जेन कला मात गर्भ प्रतपालं।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धिहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा।

स्याम आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत सादृध्यं अच्युत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्यान खर है विखम स्थान मन मोह मदनं महा असाद पंच तस्कर है हीत मोह पै परम भ्रमणं अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलहं रोग खंडन है।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर

कर्पूर पोहप सुगंधा परस मनुखिय देहं मलीनं मज्झा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानणु।

चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हम साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंत।

मर्दन है हतं पंच सतनेन नानक हर बाणी परहारन है बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुरजीण चढ़ियं नह जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी पावनी साध संगेन लभंतंग बड भागन है हर नाम गुण रमणं नानक संसार सागर नह व्यापण।

गोविंद रमण साध संग मह सुमंत्र साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्धिहंग बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारण कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहैर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत।

हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूप पावती उस्तत कहन न जाए मुख हो तोहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाई हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागणे तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया हरे हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पुराइया सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तर।

आवह सच तना सुपने उभी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दया रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म हुए पस

हेम की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहे लख घाटी ऊंचो घनो चंचल कीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन स्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट भयो।

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आई।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छास पिए संसार, कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया तिन खाया अवर बलोवन हार, कबीर माया चोरती मुस मुस लावे हाथ, एक कबीरा नाम सै

आहे हों बलिहारी तिनको पैस जो नीकस जाहे कबीर यो तन जाएगा सको तने हो बोर नांगे पामो ते गए जिनके लाख करोड़ कबीर यो तन जाएगा तमने मार गलाए कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी ना जानिया कोई ऐसे मरने जो मरे बहुत।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड़

अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यो कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे प्राण जाहेंगे शूट, कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो।

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो

थोड़े जल माछुली चीवर मेले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते भलो।

वैष्णो की कुकर भली साकत की बुरी माई। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाय। कबीर हर

घोर काया हांडी काठ की ना उह चरह बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोहरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अद महाजली।

कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाए, कबीर ऐसा को नहीं

सती पकारै चेह चढ़ी, सुनो हो वीर मसान। लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले,

मुए चार पुरख दोए नार, कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठोर, जिन हर का नाम ना चेतेओ कहा पुलाने और, कबीर संगत करिए साध की।

जिन हर का नाम ना चेते हो, बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

सते मुख में पर है रेत रास बरानी राखते खाया घर का खेत कबीर साधु की संगत रहो जौ की भूसी खाओ होन हार सो होए है साकत।

परी तुए हुए ना सेत कबीर मन मुंडिया नहीं केस मडाए काए जो किस किया सो मन किया मुंडा मुंड अजाए कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए ता जाओ चरण कमल चित बेदिया राम नाम समाओ कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार जंत बचारा क्या करे चले बजावन हार कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते पर

आई सर्पन हुए कह अवतरे जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार गद ही हुए कह अवतरे पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

रहो हरख गुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे

होएगा। जो सिर पर आवे काल, कबीर ऐसा जन तिक देखिया, जैसी तोई लाख, दिसै चंचल बहुगुना, मत ही नाना।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के।

राम कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला राम।

छोरा पूज है नारतन करोड़ कबीरा एक चंपो देखियो हीरा हाट बकाय बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाय कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां

मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही भोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागई ज्यो बांस बजाई है फूक। कबीर है गै बाहन सगन घन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुज्य हर

दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जेह मार्ग पंडित गए, पाचे परी बहीर, एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चालत कुल की कान, तब कुल किस का लाज सी, जब

अंत मल्यागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोय कह जाने आपन तनी कह दास देवानी होय कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पान।

आस चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा हुए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमर

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतक हार कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

जोर कर कहते हैं जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है।

होवे उस साचे दे बान मह पल्ला ना पकड़ कोई। कबीर धरती अर आकाश मह दोए तू बरी आवद हट दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध कबीर मेरा मुझ मह किछ नहीं।

हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू।

आस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए कबीर टालै टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना ब्यापई।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय लै।

चितवे होए अपना चितवे आहर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाहिय जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेउ फिर आ लालच माहे पाप करमता।

बोला कबीर राम नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बम्ब कबीर आखी केरे माटके

तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

लोहिन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोहिन क्यों करो सब

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारो बेदोह माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत भाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

ਇੱਕ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ ਅੱਗੋ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ ਦੇ

आ शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद रीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहनगे दुख रुखी सुखी खाए कै।

नाती तोती संभ ही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू के रे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए।

फरीदा कन मसला सूफ गल गिलकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात फरीदा रत्ती रत ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रत ना होय महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होय जो सहरते अपने तित तन लोभ रत ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाय ज्यों बैसंतर तात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाय नानक ते जन सोहने जे रते हर रंग लाय फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंढी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछां पी पलियां रे

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेत फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए परांद दरवेसा नू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल से थके कवल अकल।

पंजे वक्त मसीत कोठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवे

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण होहे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख। चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौहणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैण निंदरावले तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली

चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए।

करण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो ब्यापे व्यापक देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रख्या कर आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एक है तू ही एक है अन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार

अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

आप अपुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम ना पवै अमुलो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिय सिद्ध साधक ते तीस कोर तेरे

मद माता बिचरत बिकल बड़ो अभमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हसानी।

चेत तन निर्मत दुर्लभ देहे सवार धरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप दूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी

नानक काट परम परी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यों मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन।

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार परयू है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर तन शीन अज्ञान हरयो है जोग नबीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सोच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंध है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल

खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन तब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो सत जुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल

वर्ज पंच भूत एक कर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल पखन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार वे जो सेवह शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर भाव उतार किए निरपार सत

बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सुनाहु सकत बिदार कहो कीर्त काल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वास करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन।

है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै हठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन।

जती तपीसर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पता मह चरण चित अमृत रसिया इत नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरन रव सुरतर साख है उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस भाख है जन्म ता एहो सकियत जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशास है भलो प्रसिद्ध के जो तनु कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भवजन हरन गुरे अमरदास तै पायो नाम त्यावह देवत तीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाधि।

अमर गुर तुस दियो करतार। सत सूरो सीर बलवंत सत पहाए, संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीना। जिस धीरज धुर धवल तुजा।

मुखहु भगत उच्चरे अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै हाथ ता पर सके अत हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सके अत जी गुर अमर पणिजै नैन ता पर सके अत नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अत श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

ज्ञानियो सुपन एक प्रतख एक समहलीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास।

जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुख मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म

डिठे सन्यासी तपस्य है मुखों ए पंडित मिठे वर्ष एक हों फिरियो किने नहो पर क्यों लायो कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगी।

पाद सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच

इव जुद्ध कार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाल।

निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अविनाशी अवगत ते आयो।

तब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिनत

सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निद नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरी।

कै सतगुर शब्द अथाह हमें तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायु अजूनी संभवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायु गुर रामदास कल उच्चरै कै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सत

गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवे।

खिन मात्र जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

ज्ञान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पार कमन उपमा देओ कमन सेवा सरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच क्रम जान अनक

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रे पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सत्य है कार जो गुरु गुरु अहनस जपै दास भट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मह तरै सो जन्म मरण दो थे रह गुर बिन घोर अंधार।

गुर कर सच बीचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखियो ना हो कियो, ते अक्यात संसार में, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत त्या

तेरे जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो कुत्ती जो प्यास पियूस पिवन की वंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समर्थ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओहो हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओहो बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओहो ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुनह गाव है प्रभाते है करह इशनान इशनान करह प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी।

माल मुकट सीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आदि पुर

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बद सुपर सदा सब।

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावै आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विधह मान गुर आप थपयो थिर

देखत अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानियो तीनी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द।

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल पण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम नि

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और है काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मह अर्जन गुर भगत कै हेत पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माहि धरी जग और न जाहि महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर।

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल

हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नहावै नित पुराण बाचिय है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम।

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण अपार पहला

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाही पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल्ले उठी चल्ले साध नाही अवेही गल्ले राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लै गया दह सिरू

जो लेवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां जैसे ती मेरा संग।

रह सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फ है सर्फ है सदा सदा एव गई विहाय नानक किसनो आखी है बिन पुछिया ही ले जाए दोष ना दे राए नो मत चल जा बुढ़ा होए गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तो है पूरे का किया सब कुछ पूरा कट

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाणै जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती भउ मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया जन नानक पार उतार माया मोहे जग भरमिया घर मुसै खबर ना होए काम क्रोध मन हिर लया मन मुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

भई मर जीविया सहज सुभाय नानक भगती रतिया हर हर नाम समाय मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जो बन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलात मोह।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करह विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा। हौं सद बनिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पुयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन कौ पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल।

पूत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख कृपा तारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक।

नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिन

ਸਮਾਉ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਅਹਿਨ ਸਲਾਗਾ ਭਾਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਹਉ।

बिन हर शांत न आवई किसे आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार। हर कृपा का

जन सिज्जै, बिन शब्दै मुक्त ना होई। भेख करह बहु कर्म बगुत्ते, पाए दूजै परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईऐ, जे सौ लोचै कोई। हर का नाउ अत वड ऊचा, ऊची हूं ऊचा होई। अपड़ कोई ना सकई, जे सौ लोचै कोई। मुख संयम हच्छा ना होवई, कर भेख भवै सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै, कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै, गुर शब्द विचारै कोई। नानक शब्द मरै मन मानिए, साचे साची सोई। माया मोह दुख सागर है, बिख

आए नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जप

बहु चित्तवदी बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

अंत काल तिथै तो है जिथै हाथ ना पाए मन मुख सेती संग करे मुहे कालख दाग लगाए मुह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम बसै मन आए जन्म मर

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कर।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कह जाही गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई ओना मैल पतंग न लगई, जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ न उतरै, जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाई, बुरा करे सो केहा सिज्जै अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै।

जीव सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किन विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया

अजोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिखि उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण

कर्म कार नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजे नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया, मोह माया विछड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा, हुक्मे ही सुख पाए। हुक्मो सेवे हुक्म अरादे, हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त नियम सोच संयम, मन चिंदिया पल पाए। सदा

आए मानमो को हुक्म ना बुझे बपड़ी नेता हो मैं कर्म कमाए वर्त नियम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करता है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अन दिन सेवा करत समाए अंतर सतगुर गुरु सब पूजे

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हो फिरा पी हिरदै रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित त्याया सतगुर सौ चित लाए।

कूड करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग ना

आए जम्मन मरन ना चुकई हो मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल।

पार लंघाए गुरसिखां की हर धूड़ देह हम पापी पी गत पाहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बधारियन

जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गुल गोले।

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बहते आंसू ही है सबना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना।

लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औध जात है बीत, बिरद पयो सूजै नहीं।

नानक भजे सफल हो हे ते काम। जिह बागुन गोविंद भजो करन सो।

मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिटयो ना जम को त्रास कहो नानक।

पई चितवत रहे ओठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए।

सो नर मुक्ता जान तेहे नर हर अंतर नहीं नानक साची मान।

बनोदा गावहे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औगुजरी

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर

हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रह रास रखाओ हर जन केवड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तब तस मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जंपास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्त है उद्यम जा आहार हर जियो परया।

तेरे भगत सलाहंतु जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे घर पूजा जी तब ताप है जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी कर क्रिया खड़ कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तो जेवड़ अवर न कोई।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कम सुमार संबत साहा लिखया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पहुंच।

सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध इव चलत मोही सामे जो

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीन अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस घोड़े रसे जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोले पद पाई है तो बोलिया प्रवान फिक्का बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है, खोड़ ना सीज सकोए, खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए, नानक मन समझाई है, गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया, पार ना परम तिनाहा, हर जप लहा अगला निरपो।

पौन की बाणी यो मन रत्ता माया खसम की नदर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया ती का रखे पंज कर साथी नाओ शैतान मत कट जाई नानक आख राहे पै चलना माल तन कितकू संजया ही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसार।

दे, नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बगस करे, कहना किशु ना जावई, जि पावे थ दे, नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है।

कर्म कमाए जात सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोए श्री राग महला तीजा काया साधे उर्द तप करे विचों होमे ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कब ही पाए गुर कै शब्द जीवित मरे हर नाम से मन आए सुन मन मेरे भाजे सतगुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिग भवजर शब्द गुर तरना हर हाओ त्रैगुण सभा तात है।

मान रे दूजा पाव चुकाए अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सो पाए अरहाओ सच बाणी सच शब्द है क्या सच तरे प्यार हर का नाम मन वसे हम में क्रोध निवार मन निर्मल नाम त्याई है ता पाए मोख द्वार हम में विच जग बिरसदा मर जम्मे आवे जाए मन मु शब्द ना जाननी जसन पद गवाए गुर सेवा नाओ पाई है सच्चे रहे सुमाए शब्द मने गुर पाई है विचों आप गवाए अनदन पद करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वसया नानक सह सुमाए श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो से दुखिए जुग चार कर हुंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अहंकार सदगुरु क्या फिटकया मंग थके संसार सच्चा शब्द न सेवयो अब काज सवारण हार मन मेरे सदा हर वेख हदूर जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहा भरपूर अरहाओ सच सलाहन से।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए। मन मेरे अन दिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत। हरहाओ मन की इच्छा पूरिया शब्द रहा भरपूर, पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर। सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर। जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय। सुन्ये कर का पौना ज्यों आया त्यों जाए, मानव जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए। सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए, गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए। सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए, नानक दर सच्चे सच्यार है।

अजविकार गुर सबदी मन रंगया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो पर वेखो मन विचार मनमुख मैल न उतरे

आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले सुमाए, त्रि राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अत भला, केत बिद मिले रसकाए, जाय पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए, कोई वे प्रवाह ना बोलनी, हो मरमल धोवा तिन पाए, भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कढे हो में मार, हरहाओ गुरमुखिया सुहागणी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वजनर तन है, जो मने सो हर रस खाए, सेवड भागी वड जानिए, जेन हर रस खादा गुर पाए, यो हर रस वणतन सप्त है, पागहीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मानमुख रहे बिरलाए, कोई सतगुर आगे नानवे, उन्ना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत टोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसया मन सोए।

जे सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहेब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिव लाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता थोपड़ा मनो ना विसर जिन सब किश

तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग मोहल्ला पंजवां। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए। मिल साधु मुख उजला

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेस सच स्यों मरे न आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत पाए आचरज रूप

विचार क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यो सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी।

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एक करनी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना दूते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तुम वड़ पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गात अवगत कछ नदर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया।

पाए और राखे से उबरे हाथे स्यों निमलाए। हर जीव शब्द पछाणिए साजरते गुरवाक तेत तन माइल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक। जिन्नी सच पछाणिया छे सुगिए जो चार हो मैं तिस ना मार के सच रखिया और तार। जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। सचो वखर लदिए लाभ सदा सच रास साची दर गए बैसई

तेर रहे सुहाग, भाई रे अबर नही मैं ताओ, मैं तन्नाम निधान गए गुरदिया बल जाओ, अरहाओ गुरमत पात साबा तिस, तिसके संग मिलाओ, रिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ, मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ, गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ, बिन सतगुर नाओ ना पाईए बिन नावे कैसाओ, आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ, बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत, तब लग मैल ना पाईए जावलग साज ना चीत, शब्द रपे कर बाईए निर्वाणी पद नीत, हाँ गुर पूछो अपने गुर पुशकार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हाँ में दुख जल जाओ, सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ, शब्द रते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार, सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार, सब मरे सो मर गए

माया मोह चुकाया, गुरमति सहत सुपहाय। फिर सब दे जग दुखिया फिर मन मुखा नू गी खाए, सब दे नाम त्याई है सब दे सच सुमाए। माया पूले सिद्ध फिर समाध ना लगे सुपहाए, तीने लो व्याप्त है

है, क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जो बद है, हम में कर्म कमाए, बिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, बिन प्रीति भगत न होवई, बिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण न जापनी, बिन गुण भगत न होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मनम कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी असी जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

परम भुलाए, पढ़िए कुणिए क्या कथिए, क्या मुंडो पुथा जाए। चौथे पद में सहज है, पुरमुख पल्ले पाए, निर्गुण नाम निधान है, फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया, सच्चे सच्ची सोए, उलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। किन सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे की सोजी पई, सच्चे शब्द पार। आपे बख्स मलायन, पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत मिलावन हार, पूरे शब्द सराई है।

तो संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना तर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा थव नावे नू परतापदा सतगुर बाज ना पायो था मोही माया जाल दियो सतगुर कौ पल जाइए चित मिले परमगत पाइए सुर नर मुंदन लोच दे तो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो क्यों जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ए करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरे भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा।

ब्रह्म विचारया जन्म सवारया पूर्ण कृपा प्रब करी कर गए लीने हर जसो दीने जोन ना तावे नय मरी सत गुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ सुवामी।

उत्तम नामक जिन श्रेया सब को जियो हरजी सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोय तो घर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोय जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोय जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर ना कोय हर गुर सुननाई पाइये बनजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाओ संत जनाविन पाइया हर किने ना पाया ना हो विच होमे कर्म

पौड़ी। तू ऐसा हर नाम ते आइये मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। तू ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छिड़ाए। तू ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया बड़ भागी, तिन निंदक दुष्ट सा पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, हव नावे अगे आने वाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी, मन खोटे कूड़ियार। तिरके पाने ना चले, हुक्म करेगा वार। गुर के पाने जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी है जो

पतद पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। तुम जो नायक आछो अंतरजामी, प्राप्ते जन जानीजे जानते स्वामी। शरीर अराध मोको विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। राग माज

तेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निवन लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांद पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन सारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नूं आप प्रतपाले।

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए ताप्त राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावण इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावण सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रहे रंगराता दर सच्चे सोजी पावणे पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम भुलाणी अग्ञानी अंधा मग न जाने फेर आमन जावणे गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाकर खाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणे होमे मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावण जीवन मरना सब तुदे ताई जिस बख्शे ते दे वडियाई नानक नाम ध्याय सदा तू जमन मरण सवारण माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तो लै संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कै गुणी समावण होवारी जीववारी हर का नाम मन वसावणे जो सच लागे से अनदन जागे दर सच्चे सोभा पावणे रहाओ आ सुने ते आपे वेख जिसनु नदर करे सोई जन लेख आपे लाए लय सो लाग गुरमुख सच कमावणे जिस आप भुलाए सो किथे खत पाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी पूरे कर्म मिलावणे कई अड़े अनदन सुती तंत विसारी अवगुण मुती अन दिन सदा फिरे बिल लांदी बिन फिर नींद ना पावणे पेई जड़े सुखदाता जाता होमे मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा प्रेरावे सच सिगार बनावणे लख 84 जी उपाय जिसनु नदर करे।

अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पिया मनिया, सो किछ करे जो चित न होई, इसका हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पिया मनिया, अजब कम करते घर केरे, यो मन भूला जांदा फेरे, अमृत बाणी स्यो चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया, खोटे खरे तु आप्यो पाए, तु आपे परखे लोग सुभाए, खरे परख जाने पाए, खोटे परम भुलावणिया, क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुरप्रसादी शब्द सलाही, तेरे भाणे विच अमृत वसे, तू भाणे अमृत पी आवणिया, अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुदाता, पी अमृत सा भुख ले जावणिया, माझ महला तीजा, अमृत वरसै सह सुखाय, गुरमुख बिरला कोई जन पाए, अमृत पीसदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया, हौ वारी जीव मारी, गुरमुख अमृत पी आवणिया, रसना चाख सदर है रंगराती, सहजे हर गुण गावणिया, रखाओ गुरप्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे एक स्यो लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच सुमावणिया, सबना उपर नदर प्रातेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुते बार किश न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया, गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया, सगुर सेवे सोजन सोहे, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सह सुनावणिया, मनमुख भूला दूजे पाए खुवाए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अन दिन सदा विष्टा मैं वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया, अमृत पीवे जिसनु आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लवलाए, पूर्ण पूरे सब आपे, गुरमंदर ही आवणिया, आपे आप निरंजन सोई, जे सिरजीत ने आपे गोई, नानक ना समार सदा तू, हे जे सच समावणिया, माझ महला तीजा, से सच लागे जोत पाए, सदा सच सेवे सह सुपाए, सच्चे शब्द सच्चा सालाही, सच्चे मेल मलावणिया, हौ वारी जू मारी, सच सालाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच सुमावणिया, रखाओ जय देखा सच सबनी थाई, गुरप्रसादी मन मसाई, तान सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया, मनसा मार सच समाणी, एमन डिठी सब आमन जानी, सतगुर सेवे सदा मन निचल, निर करवा सा पावणिया, गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेग सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया, जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम सुमाले से वडभागी, सच्चे शब्द आ मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया, लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अन दिन सज शब्द सलाही, होर कोई न कीमत पावणिया, पढ़ पढ़ थाके सांत न आई, इसना जाले शुद्ध न काई, बिख विहाजे बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बेखा मणिया, गुरप्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाणा, नानक एको ना वरते मन अंतर, गुरप्रसादी पावणिया, माझ महला तीजा, वर्ण रूप वरसे सब तेरे, मर मर जम्मे फिर पवे कनेरे, तू एको निचल अगमे पारा, गुरमती बूझ बुझावणिया, हौ वारी जू मारी, राम ना मन मसावणिया, तिस रूप ना रेख्या वर्ण ना कोई, गुरमती आप बुझावणिया, रखाओ ता एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गोबिंद प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया, तिस ना अग्नि जले संसारा, लोभ अवमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया, गुर का शब्द ओ विरला बूझे, आ मारे ता तिरपण सूझे, फिर ओ मरे न मरना होवे, हे जे सच सुमावणिया, माया मैं फिर चित न लाए, गुर कै शब्द सदरे सुमाए, सच सलाए सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया, सच सलाई सदा हजूरे, गुर कै शब्द रहया फर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया, सच मन अंदर रहया सुमाए, सदा सच निचल आवे ना जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच सुमावणिया, सच सराही